0: पापा कहानी सुनाओ ना।
1: कौन सी कहानी सुनेंगे आप?
2: वो जो राजू चाचा ने आपको सुनाई थी ना,
3: वो शेर वाली कहानी।
1: शेर वाली कहानी? लो तो सुनो। एक समय की बात सुनो, ये बात है बड़ी पुरानी। मैंने तुम्हारे राजू चाचा से सुनी थी ये कहानी।
4: एक शेर था एक शेरनी, उनके थे तीन बच्चे। तुम जैसे वो शैतान थे लेकिन
5: लेकिन क्या पापा?

समय रुका, फिर धीरे धीरे चलने लगा। मन का घाव धीरे धीरे भरने लगा, बाप की उंगली थाम के बच्चे चलने लगे, मां के बदले बाप की गोद में पलने लगे। साल महीने मौसम आने जाने लगे, शेर के बच्चे फिर से हंसने गाने लगे। बाकी कहानी कल, चलो अभी सो जाओ। अच्छा बाबा, तो सुनो।